0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
1: शान रिजालत मौला।

पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद है।

अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाएं, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद हैदर वरगा सकीन कोई।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे हो नारे हैदरी।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: गानो सुठो
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
5: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347 3141 200।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
7: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
5: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578 6
5: जी हां 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं 3FM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सदर आसिफ अली ज़रदारी मुख़्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजिस जी मुक़ररी ऐं तौसीक़ जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सिंध हाई कोर्ट ऐं लाहौर हाई कोर्ट में कुझु जजिस जी तौसीक़ जी पिण मंज़ूरी ॾेई वई। सुप्रीम कोर्ट जे जजिस जूं पघारूं, अलाउंसिस ऐं पेंशन बि वफ़ाक़ी आईनी अदालत जे जजिस जे बराबर करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। हाई कोर्ट जे जजिस जे रिटायरमेंट, पेंशन ऐं ॿियनि सहूलियतुनि बाबति 1997 जे हुकुमनामे में पिण तरमीम जी मंज़ूरी ॾिनी वई। सदर पारां हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सनत ऐं पैदावार बाबति ख़ुसूसी सलाहकार मुक़रर करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई आहे।

अमेरिकी सदर ट्रंप जो जंग में नुकसान जो हर्जानो ईरान का वसूल करण जो ऐलान सदस्य चवण आहे त अबना हरमुस ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे। बारूदी सुरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि। ईरान खिलाफ़ कार्रवाइयूं तेज़ करे सघूं था, ईरान लाइ मसलो पैदा करे सघूं था, पर उहे हाणे कंगाल थी विया आहिनि। हाणे ईरान वटि पैसा नाहिनि। ईरान खां जंग में थियल नुक़सान जो हर्जाणो तलब कयो वेंदो।

ईरान में नए फौजी बंदी सुप्रीम लीडर मुश्तबा आयतुल्ला खामनाई छह नवा टॉप मिलिट्री कमांडर मुकरर करे छा। ईरानी मीडिया मूजिब मुकररियों जनरल स्टाफ पासदारन इनकलाब एम्बेसी में कयूं वयूं। मेजर जनरल अहमद वहीदी के मेजर जनरल के अहदे से तरक्की डेई पासदारन इनकलाब कोर जो कमांडर इन चीफ मुकरर कर वो है। रेयर एडमिरल उज़माई आर आईआरजीसी नेवी कमांडर ए हुसैन टाइप बेसिस फोर्स जो कमांडर मुकरर। मेजर जनरल अली हथियारबंद फौज जो सरबराह मुकरर। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर सुप्रीम लीडर जो सियासी सलाहकार। डॉक्टर मोहसिन रजाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में खुसूसी नुमाइंदो मुकरर।

वफ़ाक़ी काबिना मके गडि॒यल दिफ़ाई मुआहिदे खे तारीख़ी करार ॾेई छडि॒यो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त मके दिफ़ाई मुआहिदे जो मक़सदु कंहिं बि सूरत में जारियत न आहे। हीउ मुआहिदो टिनी मुल्कनि विच में ख़िते में अमुन सलामती ऐं खु़शहालीअ लाइ आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी काबिना खे ब्रीफिंग ॾींदे हुरमिन शरीफ़नि जे तहफ़ुज़ जी ज़िमेवारीअ खे पाकिस्तान जे अवाम ऐं हथियारबंद फ़ौजियुनि लाइ अहम फ़र्ज़ करार ॾिनो ऐं पाकिस्तान सऊदी अरब तरक़िया दिफ़ाई मुआहिदो पहिरियां खां मौजूदु सहकार जो तसलसुल आहे। शहबाज शरीफ़ इहो बि चयो त आज़ाद कश्मीर जे अवाम मुस्लिम लीग नून खे वोट ॾिना। कश्मीरी अवाम जो वोट नवाज़ शरीफ़ ते भरपूर एतमाद जो इज़हार आहे।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM
2: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786।
4: जी हा 2031-25-25-700।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजन जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान का थियल नुकसान जो अजालो करण जो मुतालबो ट्रंप आबन हरमुस से अमेरिका जो 100% कंट्रोल है बारूदी सुरंगू साफ कई व्यून ईरान हाने कंगाल थी वो है बटस पैसा नाहन गजा बाबत अमुन मनसूबो रद्द करण ते नियतन याहू के जल्द जवाब डींदस। आबन हरमुस जो तहफुज अमेरिकी हमला रोकण ए नाकाबंदी के खात्मे सा सलाहड़ेल है। ईरानी परदे वजीर अब्बास इराकची आबन हरमुस की बंदिश जो वाहिद सबब अमेरिकी इसराइली जारियत है। ईरानी परदे वजीर जर्मन हम मुनसिब से फोन ते राबतो करे उमान सा जारी मुशावरत बाबत भी आगाह किया।

सदर आसिफ जरदारी मुख़्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजिस जी मुकररी है। वाद जी मंजूरी डेई छदी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस जी मुकररी जी मंजूरी डिनी वही। सिंध हाई कोर्ट ए लाहौर हाई कोर्ट में कुछ जजिस के वाद की पिण मंजूरी डेई वही। सुप्रीम कोर्ट के जजिस जो पगारू अलाउंसिस ए पेंशन भी वफाकी आईनी अदालत के जजिस के बराबर करण की मंजूरी डिनी वही। हाई कोर्ट के जजिस के रिटायरमेंट पेंशन ए बेन सहूलत बाबत 1997 के हुक्मनामे में तरमीम की भी मंजूरी डिनी वही। हारून अख्तर के वजीर आजम जो सनत ए पैदावार बाबत सलाहकार मुकर करण की भी मंजूरी।

ॾींहं साहब वेझो नामालूम शख़्स जो लाश हथ सुञाणप न थी। अब्दाल शाख वेझो हथायल लाश खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। फुलवेजो गढ़ी हसन डिस्ट्रिक्ट खे RD 33 वटां घारो सवें एकड़नि ते पोखियल फसल पाणी हेठ अची वियो। गोठाणनि पारां आपाशी हमले खां घारो बंदि कराइण जो मुतालबो। उॿावड़ो वेझो अदालत मां फरार थियल ॿिनि बदनाम धाड़ेलनि वारे वाके जो केस दाखिल। SHO जी फरियाद ते वाके जो केस 12 अहलकारनि मथां उॿावड़ो थाणे ते दाख़िल कयो वियो। गफ़लत ऐं लापरवाही करण जा कलम बि शामिल। गुज़िरियल ॾींहं बदनाम धाड़ेल राहिब ऐं मोरियो शहर उॿावड़ो जी अदालत मां फरार थी विया हुआ।

ऐं सिन समेत समूरे मुल्क में आज़ादीअ जो जशन मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। टंडो जाम में शागिर्दनि जी रैली, खैरपुर में जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां तकरीब, सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया, ॿारनि ऐं वॾनि पारां क़ौमी झंडनि जी ख़रीदारी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ए शिफाव पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
6: अमाजे पेंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहयो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
6: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहयो आहे।
5: उनका अलावा असा वट रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
6: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
5: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाणी असा सा राबतो करियो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003

0: 435. Address Tando Ghulam Ali Road, Mathli.
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
0: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
5: सुनते रहो GFM 90.4
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331-252-5786
0: जी हा 231-525-786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।
1: यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

वो तमाम से लोग जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी बर्थडे सैटरडे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार है उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे जिंदगी गुलजार है. तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना और इसी के साथ हम आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
10: सुनते रहो GFM 90.4।
11: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
11: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
11: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 03312525786।
6: जी हाँ, 2315525786
11: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए सिरखेज़ असा जे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी तव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में तव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: ही गुलजार हैं, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार। और इसके साथ साथ हम आप लोगों की लाइव कॉल्स को लेने जा रहे हैं लाइवली एंड 03000113488 के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन।
0: नूर हुसैन फ्रॉम बदीन, कैसे भाई, ठीक ठाक?
1: फर्स्ट क्लास बाजी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हो?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइएगा क्या प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी बाजी, गूगल सुन रहे हैं, FM पे।
0: ओके, गाना सुनाएंगे?
1: गाना है ना, तेरा कसूर था मेरा कसूर, दिल टूटा है तेरे प्यार में।
0: नहीं, ये तो बॉलीवुड का कंटेंट है, मतलब बॉलीवुड का गाना, ये तो हम नहीं सुना सकते, पाकिस्तानी बताया ना।
1: नहीं, पाकिस्तान सुना, ये दिल आपका हुआ,
0: ये दिल आपका हुआ, चले ये चलाते हैं। जी थैंक यू सो मच। गा के नहीं सुनाएंगे?
1: जी
0: गा के नहीं सुनाएंगे?
1: ये दिल आपका हुआ ऐसे ही है ना, ये दिल आपका हुआ,
0: नहीं गा के सुनाना है ना, सेगमेंट गाने वाला है।
1: अच्छा
0: हाँ, चले कोई बात नहीं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। भाई शर्मा आ गए। कोई बात नहीं, एंड गाना आ चुका है जी, ये दिल आपका हुआ, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। इतने अच्छे गाने के मतलब स्टार्टिंग में कोई एक से डेढ़ मिनट का तो उन्होंने म्यूजिक दे रखा है, वेरी बैड।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: अमेरिका जो 100% कंट्रोल है, बारूदी सुरंगू साफ कई वो आन ईरान हाँ कंगाल थी वो है बटस पैसा ना गजा बाबत अमुन मनसूबो रद्द करण ते नियतन याहू के जल्द जवाब डींदस। आम हरमुज जो तहफुज अमेरिकी हमला रोकण ए नाकाबंदी के खात्मे से सलाड़ियल है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास याकची आबन हरमुज की बंदिश जो वाहिद सबब अमेरिकी ए इसराइली जारियत है। ईरानी परदेही वजीर जर्मन हम मुनसिब से फोन ते राबतो करे उमान से जारी मुशावरत बाबत भी आगाह किया।

सदर आसिफ जरदारी मुख़्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजिस जी मुकररी है, वाद जी मंजूरी डेई छी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ए बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजिस की मुकररी की मंजूरी डिनी वही। सिंध हाई कोर्ट ए लाहौर हाई कोर्ट में कुछ जजिस के वाद की पिण मंजूरी डेई वही। सुप्रीम कोर्ट के जजिस जो पगारू अलाउंसिस ए पेंशन भी वफाकी आइनी अदालत के जजिस के बराबर करण की मंजूरी डिनी वही। हाई कोर्ट के जजिस के रिटायरमेंट पेंशन ए बेन सहूलत बाबत 1997 के हुक्मनामे में तरमीम की भी मंजूरी डिनी वही। हारून अख्तर के वजीर आजम जो सनत ए पैदावार बाबत सलाहकार मुकर्र करण की भी मंजूरी।

डीएस साहब वेझो नामालूम शख्स जो लाश है तो सुणप न थी। अब्दाल शाख वेझो हथायल लाश के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। ठुल वेझो गढ़ी हसन डिस्ट्री के आरडी 33 वटां घारो सवें एकड़न ते पोखियल फसल पाणी हेठ अची वियो। गोठाणनि पारां आपाशी हमले खां घारो बंद कराइण जो मुतालबो। उबावड़ो वेझो अदालत मां फरार थियल बिन बदनाम धाड़ेलन वारे वाके जो केस दाखिल। एसएचओ जी फरियाद ते वाके जो केस 12 अहलकारन मथां उबावड़ो थाणे ते दाखिल कयो वियो। गफलत ऐं लापरवाही करण जा कलम में शामिल। गुज़िरियल ॾींहुं बदनाम धाड़ेल राहिब ऐं मोरियो शहर उबावड़ो जी अदालत मां फरार थी विया हुआ।

ऐं सिंध समेत समूरे मुल्क में आज़ादीअ जो जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। टंडो जाम में शागिर्दनि जी रैली, खैरपुर में जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां तकरीब, सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया, ॿारनि ऐं वॾनि पारां क़ौमी झंडनि जी ख़रीदारी।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन

0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
0: जी हा 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

गाना भी हम आपसे सुन लेंगे, नो इश्यू। क्या हल निकाला जाए इसका कि बहुत सारे लोगों की कॉल नहीं लगती, और तकरीबन हर शो में सबकी यही शिकायत होती है कि हमारी कॉल लगती नहीं है, और लगती है तो आप रिसीव नहीं करती। तो आगे चलते हैं, 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स जो कि आप लोग करेंगे, और साथ साथ हम मैसेजेस की तरफ भी मूव करेंगे। कमेंट भी हमें रिसीव हुआ है सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपसे, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। ओके, रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल बाय सबाद बातिन, इसको सुनेंगे और कॉल्स लेंगे बहुत सारी।

की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं और ये वाइब आपको फिर मिलके गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, किसी भी वाइब इंसान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। शुक्रिया।

0: Okay, ji. इस सेगमेंट की फर्स्ट कॉल. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: अभी खोला है.
0: टंग ट्विस्टर सुना है? बोलेंगे?
1: नहीं नहीं, फोन सुना है अभी.
0: वेरी बैड. चले थोड़ा सा सुने फिर कॉल कीजिएगा. थैंक यू सो मच. 03000113488. मेक श्योर वही लोग कॉल करेंगे, कंटेस्ट शो बोलेंगे. और जो लोग कॉल करते हैं, मतलब बार बार कॉल करते हैं, लगातार कॉल करते हैं, डेली कॉल करते हैं, तो आप लोगों ने डेली कॉल नहीं करनी है. आप लोगों ने एक या दो दिन का गैप देके फिर कॉल करनी है. तो मैक्सिमम ऐसे कॉलर्स जिनकी कॉल नहीं लग पा रही है, या जो दो या तीन दिन के बाद कॉल करते हैं, उनकी लग सके, ठीक है, ताकि इसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर ना जाए, इसका ब्लेम कहीं और भी चला जाए. ठीक है जी. असल में जहां पे ब्लेम जाना चाहिए वहां पे जाता नहीं है, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है. खैर कोई बात नहीं. एक और कॉलर. हेलो हेलो हेलो हेलो, कोई है? आवाज नहीं आ रही है. वेरी बैड. ओके जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो. ओके जी, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रही है. 03000113488.

कल्लू का काला कब्बा कड़क कचोरी कुतर गया ये कहेंगे ठीक है। 0300001348 के ऊपर बहुत सारी लाइव कॉल्स।

0: Okay, ji, next caller. Hello. Hello. Okay, ji, आवाज नहीं आ रही है. Hello.
1: Hello, hello. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. कौन कहाँ से?
1: मैं मोहम्मद इस्माइल फुलशेर से.
0: मोहम्मद इस्माइल कैसे हैं? ठीक ठाक. प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम रोज सुनता हूँ.
0: क्या नाम है इसका?
1: जिंदगी गुजार है.
0: ओके, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी?
1: जी टंग ट्विस्टर थोड़ा सुनाइए.
0: थोड़ा सुनाओ, थोड़ा सा सुने. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया.
1: कल्लू का काला कौवा
0: कड़क कचोरी कुतर गया.
1: कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया.
0: यस.
1: कल्लू का काला कौवा कचोरी.
0: आप तो कौवे और कचोरी में बीच में ही अटक गए हैं. आपसे ना हो पाएगा, और कुछ कहेंगे?
1: जी आप खैर खैरियत है?
0: जी बिल्कुल खैर खैरियत है. जी जी
1: मैं आपको ये कह रहा था कि आपका जो भी प्रोग्राम है मैं अच्छे से सुनता हूँ और बहुत शौक से सुना करता हूँ एवरी मंडे टू थर्सडे.
0: थैंक यू सो मच.
1: फ्रॉम 11 to 1 PM.
0: अरे वाह, क्या बात है. मतलब कॉपी भी की हुई है, इतना शौक से सुनते हैं.
1: आपका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप कभी कभी कहती थी ये अपना सुलभ महीना था, उसमें आपने कहा था कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी कभी मैं सिर्फ सुनाती रहूँ, आप लोग सुनते रहे.
0: अच्छा, ये मैंने बोला था.
1: ये आपका टाइटल और ये जो बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू कि आप इतना शौक से सुनते हैं भाई. थैंक यू.
1: जी जी
0: और कुछ कहना है?
1: नहीं, बस और कुछ नहीं कहना है. एक अगर अरिजीत सिंह आप सुना दें अच्छा सा अपनी पसंद का तो अच्छा हो जाएगा.
0: अरिजीत सिंह का?
1: नहीं नहीं, अरिजीत सिंह.
0: अरबिक सॉन्ग सुना दो. अरबिक सुनाती हूँ. ठीक है
1: जी जी, आप अपनी पसंद का कोई अच्छा है.
0: ओके जी, अभी सुनाते हैं आपको अरबिक सॉन्ग 03000113488 के ऊपर. बैक टू बैक लाइव कॉल्स लेंगे 03000113488. एक और कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. सरदर्द, आपका ही तो इंतजार था ताकि हमारे सर में हो दर्द. ये तो शेर बन गया है ना?
2: हाँ बिल्कुल.
0: चले, इसको आप ना अपनी डायरी में लिखिएगा. ओके सरदर्द, प्रोग्राम सुना.
2: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती हूँ.
0: ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है सरदर्द. ओके टंग ट्विस्टर सुना.
2: कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी कुतर गया. कल्लू का काला कौवा कड़क कचोरी
0: कुतर गया. स्टॉप. मतलब क्या जबरदस्त फ्लो जा रहा है आपका और ये दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा है. क्या क्या राज है इसके पीछे? हमारे सुनने वालों को भी बताओ.
2: तो मैंने बोलना सीखा.
0: कैसे बोलना सीखा है?
2: मतलब आपका शो सुन के तो मैंने बोलना सीखा है.
0: मेरा शो सुन के बोलना सीखा है? अरे वाह, क्या बात है. मतलब मैं
2: बहुत खुशी थी लेकिन कॉल नहीं लगता.
0: हाँ, बस मैं यही कहूंगी कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोलना सीख रहे हैं, उनको मेरा प्रोग्राम सुनाए. बोलना सिखाए.
2: मेरी तरह सीखेगी.
0: हाँ जी, उनको बोलना आ जाएगा. और मेरे ख्याल से वाकई एक अच्छी चीज है उनको ऐसी चीजें सुनानी चाहिए ताकि उनको बोलना आए. अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर. और कुछ कहना है? थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट क्या प्ले करें हम? नेक्स्ट हम कुछ अच्छा सा प्ले करते हैं. हियर कम्स ट्विंकल ट्विंकल बाय बिलाल सईद. इसको सुनेंगे, आगे चलेंगे. और कहाँ गया हमारा गाना? हमारा गाना ये रहा.

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
4: जी हा 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: कलवा सड़क कचौरी उतर गया कलू का काला धुआ सड़क कचौरी उतर गया कलू का काला धुआ सड़क कचौरी उतर गया कलू का काला धुआ सड़क कचौरी
1: वेरी नाइस क्या मतलब पूरा गाना बना दिया कल्लू के काले कौवे पे आपने, बहुत जबरदस्त. और मैं सुन रही थी, मैं सोच रही थी कब खत्म होगा ये गाना, कितना लंबा जाता है ये गाना. वाओ क्या मतलब कैसे कैसे टैलेंट है हमारे पास, जबरदस्त
0: दिमाग में आ जाता है.
1: ओके जबरदस्त जी, और कुछ कहना है?
0: बस मैं कॉलेज मैंने बहुत किया, मैंने गाने के सेगमेंट में गाने बहुत किए, अटेंड नहीं की कॉलेज जा रही थी, अटेंड नहीं की.
1: कोई बात नहीं, दूसरी बार लग जाएगी इंशाल्लाह.
0: अच्छा
1: चलो ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हम गाने की तरफ चलेंगे एंड गाना होगा बहुत ब्यूटीफुल. और गाना जब भी हम किसी गाने को शिद्दत से चलाने की कोशिश करते हैं तो वो गाना उतनी ही देर से प्ले होता है.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाय 2347-3241-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी एक बजे तक का जी. और एक बजने में अब बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी रह चुका है, सो लास्ट में हम विनर्स भी अनाउंस करेंगे और लास्ट में हम लास्ट लकी कॉलर भी लेंगे. सो 0300 00 1134 88 के ऊपर कॉल आप लोगों की.

0: इस माँ किशोर कहते हैं कि इस हिसाब से लोगों की कचोरियाँ जल जाएंगी। किस हिसाब से?
1: यही जिंदगी के सब है सहारे मुखड़े,
0: सड़क कचोरी के हिसाब से।

0: लास्ट में लास्ट लकी कॉलर देखते हैं कि कौन है. हेलो.
1: कल्लू का काला कावा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कावा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कावा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कावा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कावा कड़क कचोरी उतर गया. कल्लू का काला कावा
0: कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से?
1: SRH.
0: SRH हमेशा लास्ट में आके टंग ट्विस्टर क्यों बोलते हैं आप?
1: इसलिए कोई मुकाबला नहीं करता ना, फिर आगे मुकाबले का हिस्सा बनना पड़ता है.
0: वाओ, मतलब क्या लॉजिक निकाला है आपने कि मुकाबला नहीं करना पड़ता. लेकिन फिर फायदा क्या जब सेगमेंट ही खत्म हो गया हो तो, है ना?
1: मतलब ये कि बोलने वाला तो बोल के चला जाता है ना, उसके मुकाबले में देखते हैं कौन आता है. जब कोई नहीं आता तो फिर कॉल करनी पड़ती है. लेकिन आपने कहा था कि जिनकी कॉल लगती है कम से कम दो दिन के बाद कॉल करें, लेकिन इसके मुकाबले में कोई आया नहीं तो फिर मुझे आना पड़ा.
0: चलें फिर आज की अच्छी बात भी बता दें.
1: आज की अच्छी बात ये है कि जब कोई गरीब किसी अमीर के पास सलाम करने के लिए जाता है ना, तो अमीर समझता है कि वो हमसे कुछ मांगने आया है. लेकिन ऐसा नहीं है. जब वो गरीब लोग किसी अमीर को सलाम करता है, वो तो उसके लिए रब से सलामती मांग रहा है उससे सलाम करके.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. और क्या खूबसूरत बात की है जी. और कुछ कहेंगे
1: आप? आज जस के नाम एक शहर है दो लाइन का,
0: बोले.
1: ये मेरे दिल अपने खुद की बेहसी में इतना खामोश हो जा कि लबों को आ कहने में भी तकलीफ ना हो.
0: Okay.
1: तशरीह करोगे आप तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी बातें भी आती होंगी जो आरजे को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं.
0: बिल्कुल जी बिल्कुल. और वाकई क्या गहरी बात की है आपने. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.
1: ठीक है, अल्लाह
0: हाफिज जी. और ये था आज का सेगमेंट. अच्छा, आज का जो टंग ट्विस्टर बोला है ना, वो बोला है. अच्छा अच्छा, किसने बोला है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. एक तो है हमेशा की तरह सरदर्द, ठीक है. दूसरे हैं सागर भाई, और तीसरे सेगमेंट खत्म होने के बाद आए, लेकिन बहुत अच्छा बोला SRH ने. तो ये तीनों, ठीक है, तीनों विनर्स हैं आज के सेगमेंट के, ठीक है जी. और इसी के साथ टाइम को अगर मैं देखती हूँ तो बहुत लिमिटेड है, और इसका मतलब ये होता है कि मुझे जाना पड़ेगा. तो जाते हैं और वापस आते हैं कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है, और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी है. लिफ्ट नंबर बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, व अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।

जजिस जूं पघारूं अलाउंसिस ऐं पेंशन बे वफ़ाकी आइनी अदालत जे जजिस जे बराबर करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। हाईकोर्ट जे जजिस जे रिटायरमेंट पेंशन ऐं ॿियनि सहूलियतुनि बाबति 1997 जे हुकुमनामे में तरमीम जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सनत ऐं पैदावार बाबति सलाहकार मुक़ररु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सां बहरीन जे परडे॒ही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राब्तो। बहरीनी परडे॒ही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर। पाक सऊदी ऐं तुर्किया जे दिफ़ाई मुआहिदे ते वाधायूं बि डि॒नियूं। बहरीनी परडे॒ही वज़ीर पारां ख़िते में अमुन वारनि पाकिस्तानी कोशिशुनि जी बि हिमायत कई वई। अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान खां थियल नुक़सान जो अज़ालो करण जो मुतालबो। ट्रम्प चयो आहे त अबन हरमुज़ ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे। बारूदी सुरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि। ईरान हाणे कंगाल थी वियो आहे। वटस पैसा नाहिनि। गज़ा बाबति अमुन मनसूबो रद्द करण ते नितिनयाहू खे जल्द जवाब ॾींदसि। अबन हरमुज़ जो तहफ़ुज़ अमेरिकी हमला रोकण ऐं नाकाबंदी जे ख़ात्मे सां सलाहड़ियल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो त अबन हरमुज़ जी बंदिश जो वाहिद सबब अमेरिकी ऐं इसराइली जहरियत आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर जो जर्मन हमनसिब सां फोन ते राब्तो करे ओमान सां जारी मुशावरत बाबति बि आगाह कयो।

मियां साहब वेझो औरताणा कपड़ा पहरियल नामालूम शख्स जो लाश हथायो आहे, सुञाणप न थी सघी आहे। अब्दाल शाख वेझो हथायल लाश खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पुलिस चयो आहे त लाश कंहिं ख्वाजा सिराज जो लॻी रहियो आहे, जेको 2 खां 3 ॾींहं पुराणो आहे। सुञाणप लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। गढ़ी यासीन में आबादगारनि जो पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ पिंड साहिब ते धरणो। आबादगारनि एहतजाज कंदे कबालो स्टाप वटि शिकारपुर लाड़काणो रोड ते धरणो आयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मुनसिपाणी विर्श करे पाणीअ जी खोट ख़तम कई वञे, पाणी मिलण ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। धड़ो लग वाली शाह सिम नाले जी खाटी न थियण ख़िलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज। बेलो रोड ते धरणो। यूसी मुरादपुर में सिम नाले जी खाटी न थियण ख़िलाफ़ 10 ॻोठनि जे रहवासियुनि लोयाट स्टाप ते एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त सिम नाले जे 10 सालनि खां खाटी नाहे कराई वई। सिम नालो गंद सां भरिजी वियो आहे, बरसातनि सबब सिम नालो ओवरटॉप थी वियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि तां घारा लॻी रहिया आहिनि। वाली शाह सिम नाले जी खाटी कराई वञे, ॿी सूरत में अदालत जो दर खड़काईंदासीं।

सिंधड़ी वेझो नींगरी आमना शहर मिठड़ाओ कैनाल में बुडी वही गोला जारी है। वारसनि पारां मिठड़ाओ कैनाल में पानी घटाने जो मुतालबो कयो वियो आहे। वारसनि जो चवण आहे त 13 सालनि जी आमना शहर मिर्गी जे मरीज़ आहे। दौरो पवण सबब कैनाल में किरी पई हुई। गोला लाइ कैनाल में पाणी घटायो वञे।

उबावड़ो वेझो अदालत में फरार थियल बिन बदनाम धाड़ेलन वारे वाके जो केस दाखिल एसएचओ की फरियाद ते वाके जो केस बारह अहलकारन मथा उबावड़ो थाने ते दाखिल कयो वयो गफलत ए लापरवाही करण जा कलम भी शामिल गुजरियल डी बदनाम धाड़ेलन राहिब ए मोरो शर उबावड़ो की अदालत में फरार थी वया हुआ। ठुल वेझो गड़ी हसन डिस्ट्रिक्ट के RD33 वटा घारो समय एकड़न ते पोखियल फसल पानी हेठ अची वियो। गोठाणन पारा हपाशी अमले का घारो बंद कराने जो मुतालबो।

0: आया फैमिली तमाम वडो दिया फाइन 14 अगस्त के संग पे एक ईदी बराबर समझ आयो
1: त पाजी कंट्री का नी बे कंट्री में शिफ्ट थिंदो ना त अवा के पो एहसास थिंदो त असा जो मुल्क आजाद आए इन जी असंग आजादी छा है।

ऐं कोलंबिया में ज़िलज़िले सबबि फोतियुनि जो अंगु वधीक 132 थी वियो। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, तयारियुनि मूजिबि मलबे हेठां वधीक माण्हुनि जे दबियल हुअण जो ख़दशो आहे।

0: साल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हय में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों की बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजूदों की बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंह बदल तमाम खूबसूरत मौसम मई सुने समातन को मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुलों दुआओं के समंदर साधु की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नहीं से चाहते कमी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तार तक से खुशी तक दिल से दिल तक और जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपके सिद्धार्थ आपके साथ मौजूद है, यहाँ पर जितने भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है कि आप इन तमाम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी ना खूबसूरती में किस तरह चार चांद लगा सकते हैं और किस तरह आप अपनी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप ये सीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। और आप लोगों को इस प्रोग्राम में बताया जाता है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो क्या क्या बातें हैं जो कि भाई बताना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जानना आप लोगों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा सीन बन जाता है कि बहुत से लोग बड़े मासूम होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भाई मार्केट में अगर आप जाते हैं तो कौन से प्रोडक्ट आपने परचेज करने और कौन से प्रोडक्ट आपने नहीं परचेज करने हैं। और अगर आपका स्किन देखा जाए तो उसके हिसाब से भी आप लोगों ने कुछ चीजों का परहेज करना होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें जो कि आप जानना चाहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 वल्के समाल आने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 वल्के समाल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही प्यारी सी नाद के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारी सी नाद सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल,
3: औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी,
3: औलाद जो नथियन, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई, औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321

0: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: ख़ुशख़बरी, अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
3: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
0: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: ताकि आप पाएं इंस्टेंट ब्राइटनेस और फ्लॉलेस ग्लो के साथ फ्रेशनेस भी। वाइट एज विटामिन सी फेस वॉश मेरा फ्रेश ग्लो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद है, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती के लिए है और किस तरह काम करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कहां से भी सुन रहे हैं, कौन कौन से एरिया से, कौन से सिटी से, वो आप हमें बताते जाएंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा हो कि आप लोग जहां जहां से भी सुन रहे हैं तो वहां उस एरिया में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल जी, तो अगर यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए जनाब तैयार किए गए हैं और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि व्हाइट एश लवली क्रीम आपके लिए मौजूद है, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपके लिए मौजूद है, व्हाइट एश का सोप आपके लिए है, व्हाइट एश फेस वॉश है, डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब है, उसके अलावा लोशन है और साथ हेयर रिमूवल लोशन है जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली अपने ऑल स्किन टाइप की लेना इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मरतबा लोग इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी स्किन टाइप जो है ना वो कुछ सेंसिटिव सी है, हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने ऑल स्किन टाइप के ऊपर जो है ना वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन्हें तैयार ही इस तरह किया गया है। जिन प्रोडक्ट्स के अंदर नेचुरल अज़ा मौजूद होते हैं ना, तो उन प्रोडक्ट्स को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है और नाइट क्रीम के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि नाइट क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करते हैं। नाइट क्रीम इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा वाला फायदा ये आपको मिलता है कि आपके चेहरे पर जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं, आपकी रंगत जो है वो जरा साफ और क्लियर हो जाती है। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, एलोवेरा मिल रहा है, ये तमाम नेचुरल अज़ा जो कि इसके अंदर एड किए गए हैं। और जब व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है जितने भी साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर मौजूद होते हैं उन तमाम तर साइड इफेक्ट्स से, और साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम और अगर आप कोई अच्छा सा साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है जनाब। और व्हाइट एश ब्यूटी सोप की सबसे खास और बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है ना इसे हर इंसान के लिए तैयार किया है। ऐसा होता है जैसे आप नाइट क्रीम रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे और ये कुछ ऐसे गिने चुने लोगों के लिए होती है, यानी कि इन्हें टीनएजर्स लगा सकते हैं, एजेड लोग लगा सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं होती। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप व्हाइट एश का ब्यूटी सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सब लोगों के लिए है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो व्हाइट एश का ब्यूटी सोप आप रेगुलर जैसे कोई भी सोप इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई चले सोप तो अब सारे लोग ही लगाएंगे लेकिन अब हम ऐसा है कि फेस वॉश यूज करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फेस वॉश यूज करते हैं, तो उन लोगों को भी पीछे नहीं छोड़ा जनाब, आप लोगों के लिए भी व्हाइट एश का फेस वॉश मौजूद है। और व्हाइट एश के फेस वॉश की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसे चेंज तैयार किया है, जैसे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है तो बिल्कुल वैसे ही व्हाइट एश का ब्यूटी सोप है, लेकिन व्हाइट एश फेस वॉश की जानिब जब हम आते हैं तो इसकी अगर बनाने की बात करें तो इसके अंदर व्हाइट एश ब्यूटी फेस वॉश के अंदर जो है ना विटामिन सी ऐड की गई है और उसके अलावा विटामिन ई ऐड की गई है, और साथ साथ ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है ना वो ब्राइट हो जाती है, एंटी एजिंग के लिए आपके चेहरे पर रिंकल्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन अंदर से जो है ना ऐसे फ्रेश सा आपको एहसास होता है कि भाई वाकई कुछ तो आप अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट आप ट्राई करके देख चुके होते हैं लेकिन जब आप व्हाइट एश का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो इतना रिफ्रेशिंग सा आपको एहसास होगा ना कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान ये तो मजे के प्रोडक्ट्स है। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को लगाने के तरीके का जानना चाहते हैं तो वैसे तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल यही होते हैं कि बस आप रात के टाइम सारे कामों काजों से फ्री हो जाएं तो अपना फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करेंगे चाहे आप व्हाइट एश ब्यूटी सोप का इस्तेमाल करें या फिर व्हाइट एश फेस वॉश का यूज करें, अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप इस तरह अप्लाई करेंगे कि भाई आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। कोई भी ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते तो उसका मसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अगर नाइट क्रीम लगाते हैं फिर मसाज करते हैं ना उनके चेहरे पर थोड़ा सा मसला बन सकता है, तो मसाज नहीं करना कोई भी नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो
बिल्कुल जी, सुकून से लगाइए, मोहब्बत से लगाइए, ताकि आपको रिजल्ट्स भी बड़े प्यार वाले और मोहब्बत के साथ ही मिलते रहे। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज का भी अंदाजा होना चाहिए कि वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो सकते हैं। बस उसके लिए आपने डायल करना होता है 0332738 4309, या अगर ये नंबर बंद मिले या फिर रिसीव ना हो तो दूसरा नंबर आपके लिए मौजूद है 0312502597। ये दोनों नंबर से ही आपकी आसानी के मुताबिक ही जनाब अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, ताकि आप भी इस्तेमाल करें और आप भी खूबसूरत हो जाए। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। और यहाँ पर मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो सर आप लोगों को बताते चले। तो आज मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल को हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रिकी सवाल है और थोड़ा सा मैथ भी इसके अंदर आती है, तो जो लोग मैथ में इंटेलिजेंट है उनको तो पता है कि भाई इसका जवाब क्या है। बाकी जो लोग बता रहे हैं इसका जवाब तो आप मुझे बताइए। सवाल कुछ यूं है कि आपने मुझे बताना है कि अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं तो टोटल कितनी मर्तबा वो हाथ मिला चुके होंगे, यानी कि हम कितनी दफा जो है ना वो हाथ मिलाना काउंट करेंगे। ठीक है, ये आज इस सवाल का आपने मुझे जवाब देना है। दोबारा रिपीट करती हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आया, अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिलाते हैं तो टोटल जो है ना हम कितनी मर्तबा उनका हाथ मिलाना काउंट करेंगे। समझ गए, जल्दी से बताइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे गाने मौजूद है, तो ये एक ब्यूटीफुल सा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो आइए जरा इस गाने को सुन लेते हैं। आप कौन है, कहाँ से सुन रहे हैं बताइए मुझे जल्दी से, और हाँ पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

आप वादी आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें कौन सा प्रोडक्ट बताइए मुझे जरा और टॉपिक आज का थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको समझने में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़े से जमाने चाहिए लेकिन इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है बहुत आसान सा सवाल है इसका जवाब आप मुझे बताने वाले हैं। टॉपिक कुछ यूं है कि अगर 10 लोग एक दूसरे से सिर्फ एक बार हाथ मिला रहे हैं तो टोटल कितनी मर्तबा वो हाथ मिलाना हम काउंट करेंगे ठीक है। बहुत आसान सवाल है मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे जवाब पता है बाकी जिनको नहीं पता उनको तो जाहिर सी बात है मुश्किल लगेगा। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी अहाल जरवार भाई मुझे लग रहा है कि आप मैथ में बहुत जीनियस इंसान हैं और अली मोहम्मद हमारे साथ अली मोहम्मद भाई आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। किशोर भाई कहते हेलो हाय हम अच गया अदा के छा आयो छपा मजे में तमा के छा आयो और अली मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम निदड़ी कहती टॉपिक 20 या 21 दफा ये कैसे समझाओ जरा मुझे। अच्छा मुझे लग रहा था आहाद आप सिर्फ एक ही जवाब देंगे लेकिन आपने सवाल के दोनों पहलू से जो है ना मुझे सही जवाब दिया है दोनों पहलू आपने देखे क्या बात है इम्प्रेस्ड। प्यारी मोमना हमारे साथ मौजूद कहती है टॉपिक आई थिंक 20 हैंड्स ओके। वासा भाई कहती है अदी सिडो थोरो मुझे दिमाग परे हलियो वयो आहे मोटाए अचान त पो जवाब दिया मतलब ओके ओके नो इश्यू

चाचा ये बात पूछ रहे हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स किस क्रीम में ज्यादा है, व्हाइट एश क्रीम में या डी स्किन क्रीम में? अब बात जरा आप लोगों को ये मैं जरा एक्सप्लेन करती रहूं। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है इसमें नेचुरल अजा मौजूद है, लेकिन जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ना उसे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, तो उसे डॉक्टर्स के हिसाब से जो ना उसमें वो चीजें ऐड की गई हैं, यानी कि डॉक्टर्स को लगता है कि ये चीजें आपकी स्किन के मुताबिक हैं और अच्छा काम करेंगी, तो उसकी चीजें वही जो है ना वो चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। जो कि मैं आपको वाजे बताती हूँ कि फलां फलां चीजें जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में तो आप जानते हैं एवोकाडो मिल्क और एलोवेरा मौजूद है, और उसके अलावा साथ ही आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया चाचा तमाम गाने जी फरमाइश करी सड़िया हलायूं था बाबा अखला खुशो में सुन रही थी, नाइस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा मेहताब अली इंटर भाई में सुन रही थी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आइए मेहताब अली फ्रॉम सुल्तानपुर केंट, मेहताब भाई आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू सो मच। के साथ साथ किशोर कहते अरे हाथ मिलाना है लेकिन किसको कहां कैसे मैं समझा नहीं, यही तो मसला है। ओके जी, और ये हमारे साथ निधि कहती है कि एवे तुक्का मारा था मैंने देख लो वो जी अरबिक जबान में गाना था। अच्छा कहते अदा मेरे ख्याल से 10 मर्तबा और आपके हिसाब से 45 आई थिंक। वो मेरे हिसाब से कैसे बताओ जरा। निधि कह रही कि पहले ही सर घूम रहा है मेरा, नींद पूरी नहीं करी और तुम्हारे टॉपिक और सर घुमा देते हैं मेरा। नहीं आज तो मैंने सोचा था आप लोगों से हल्का फुल्का सवाल पूछूंगी, लेकिन बस फिर सोचा नहीं भाई क्यों ही छोड़े।

0: सो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते जाएंगे और अपनी खूबसूरती को जो है ना वो एक अलग सा एहसास देने वाले हैं। खूबसूरतियां आजकल आसान हो चुकी हैं भाई, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को मशवरा देती हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो कुछ सोचकर ही देती होंगी ना। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन तमाम सारे प्रोडक्ट्स में सही वाला प्रोडक्ट जो होता है ना वो सूट करना और वो सेलेक्ट करना बहुत एक मुश्किल सा काम बन जाता है, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है ना उसका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कई मरतबा आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिन्हें फिर आप सारी उम्र जो है ना वो पछताते रह जाते हैं कि भाई काश हमने ऐसा नहीं करना था, और काश आप ऐसा जो है ना अगर कर चुके अपनी लाइफ के साथ, अगर आप अपनी स्किन खराब कर ही चुके हैं तो आप कोई मसला नहीं, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी स्किन जो है ना वो रिपेयर कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अपने चेहरे के जितने मसाले वो सारे दूर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा वाला सीन है कि आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं तो जी आपके लिए व्हाइटिश लवली क्रीम मौजूद है। कोई हल्का फुल्का फार्मूला आपकी लाइफ में नहीं है तो व्हाइटिश लवली क्रीम आपकी स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है। ये एक फेयरनेस क्रीम है, फेयरनेस फार्मूला तो हर किसी को पसंद आता है, हर कोई इस्तेमाल करता है, हर किसी के पर्स में बैग में मौजूद ही होता है। तो व्हाइटिश लवली क्रीम रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन के साथ तैयार की गई है जनाब। इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं, और बात यहीं पर नहीं रुकती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, यानी कि अब आपको अलग से कोई भी सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करें और आप यूं चुटकियों में रेडी हो चुके होंगे। सो व्हाइटिश लवली क्रीम जो कि एक फेयरनेस क्रीम है जिसे आपके घर के सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल करेंगे, इतना जबरदस्त फार्मूला अगर आपके पास मौजूद है तो भाई मैं ये सोच रही हूँ कि आपने सोचना नहीं है, बस आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई भाई सिदरा बाजी सही पे चवे। उनके अलावा अगर तुम एक्नी की वजह से परेशान है तो एक्नी के खत्म करने के लिए तमाम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अवेलेबल है। आई जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो तमाम नालो बुद्धि समझी वेदा हूं तो ही आयुर्वेदिक फार्मूलो है, मेडिकेटेड फार्मूलो है, जैसे डॉक्टर्स ठाको है, बिल्कुल अंजन जो ना जड़ी बूटियों एड थे स्किन जहाँ एक्नी तो खत्म कंदो ही कंदो, पर तमाम चेहरे जो निशान अच्छी वेंदा एक्नी जहाँ निशान होजन कोई चोट या फिर कोई सड़न जो निशान नंढपण में तुम खेलता चोट लगी वही फेस से चोट जो निशान है उनके तुम रिमूव करण चाहो था तो तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल कर सो था। ओके जी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगाना होता है, और साथ ही साथ दो मरतबा लगाने से पहले आपने ये करना है कि आप अपना फेस वॉश लाजमी किया करें। फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, फेस वॉश करने से ये होता है कि आपके चेहरे पर जितनी गंदगी होती है डस्ट पॉल्यूशन वगैरह होता है वो सब रिमूव हो जाता है। उसके बाद ही जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं तो तब आपके चेहरे पर जो प्रोडक्ट रिजल्ट देता है वो बहुत शानदार देता है। तो डॉक्टर पिंपल ट्यूब को भी बिल्कुल आपने ऐसे ही लगाना है।
1: कलंदर पीर पीरा हजरत मेरा नाम ले।
0: ओके जी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को आपने अपने पूरे चेहरे पर नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि जहाँ जहाँ मसला है जहाँ एक्नी जहाँ निशान है वहाँ वहाँ आपने डॉट डॉट की सूरत में इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल यही तरीके कार फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी आपको बता रही हूँ ये तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी के और बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो लाजमी ट्राई करके देखिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: मुर्शिद।

0: تم نعم قبر رعنا
1: ओके क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मकसूद मला हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपने गाने की फरमाइश कर दी मकसूद मला, मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना लगा देंगे। इरम कहती है हाय, हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। ये मौजूद हमारे साथ है सिद्रा जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शरीफ कुंभ विलेज नबी बख्श कुंभ से नियर मातली कहते हैं 100 दफा आपका जवाब होगा, 100 दफा भाई साहब को ज्यादा ही हो गया। कहते व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अच्छी है, बिल्कुल जी बहुत अच्छी है, आप ट्राई करके देखिएगा। और चाचा खाली तो वहाँ पेनल्टी भी मैसेजेस गया है, गाने जी फरमाइश किया है। आई मकसूद कहते हैं टॉपिक का जवाब है 40 दफा। ओके इरम कहती है लव यू सो मच मुझी प्यारी दोस्त, दिल चवे थी तू जो नालो मां सुकून रखी छड़िया, यार आपको डेडिकेटेड ये वाला गाना लगाना। ओके आई ट्राई। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी वफा मुमताज अली खोसू भाई, गोठ रईस गुल हसन खोसू से। वफा मुमताज अली खोसू, कलंदर बख्श खोसू, वालेकुम अस्सलाम। तेरे शो तमाम जबरदस्त आए तमाम, थैंक यू भाजू मोहब्बत हुआ है।

ओके जी वासु भाई तुम्हारा टॉपिक जो जवाब देनो आए ठीक आहे जी ठीक आहे अखलाक भाई तुम्हारा भी टॉपिक जो जवाब देनो आहे ओके हो गया जी अच्छा बिल्कुल जी हम व्हाइटिश के तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट जो भी हैं वो आप लोगों के स्किन के मुताबिक ही तैयार किए गए हैं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई व्हाइटिश का ब्यूटी प्रोडक्ट फला वाला हमारी स्किन के मुताबिक है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि हमारी स्किन के ऊपर तो कोई प्रोडक्ट सूट ही नहीं करते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए क्योंकि इन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि आपकी ऑल स्किन के ऊपर जो है ना वो अच्छे से सूट कर जाएंगे तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हो व्हाइटिश ब्यूटी सोप हो व्हाइटिश का फेस वॉश हो डॉक्टर पिंपल ट्यूब हो या फिर व्हाइटिश की लवली क्रीम क्यों ना हो अच्छा व्हाइटिश की लवली क्रीम तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ हमारे घर में सारे लोग इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है आपकी और स्किन टाइप के मुताबिक और जनाब इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड किया गया है तो चाहे आप किसी काम से जा रहे हैं तो आप व्हाइटिश लवली क्रीम लगाएं और बस आप रेडी हो चुके हैं ओके जी सो यहाँ पर प्रोग्राम है आपका हमारे साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का होगा यहाँ पर टाइम हुआ है जी न्यूज ब्रेक की जाने जाते हैं उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाला है वापसी जल्दी आप लोगों के पास तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारे साथ ही मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

आज़ाद कश्मीर में थियल चूंडन जा टे मरहला मुकमिल। नून लीग 38 सीटनि मां 24 ते कामयाबी माणी हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची वई। पीपल्स पार्टी जो 12 सीटनि सां बि॒यो नम्बर। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ पंहिंजी सीट खटण में कामयाब। आवाम दोस्त बाज़ू पार्टी हिकु सीट हासिल करे सघी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस IPP जमायत इस्लामी समेत बियूं पार्टियूं नाकाम। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सरबराह सरदार अतीक बि हाराए वियो। अॻोणो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास राणा खे बि ॿिनि तकनि तां हाराए वियो।

मौजूदा सिस्टम नाकार आहे, हुकूमतूं नाकाम थी चुकियूं आहिनि। आइन खां मथां को बि कदम न खयो वञे। नवां यूनिट या सूबा बे अवामी राय सां ठहिणु घुर्जनि। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त अवाम जे खीसनि ते टैक्स जी सूरत में धाड़ो न हयो वञे। सिंध हुकूमत कराचीअ खे खंडर बणाए छॾियो आहे। सूबे में करप्शन राज क़ाइमु आहे। पीपल्स पार्टी जे तर्जुमान सैयद जावेद चयो आहे त हाफिज़ नईम सस्ती शोहरत लाइ लाशनि ते सियासत न करे, सिंध हिकु आहे ऐं सदाई रहंदी। नवनि सूबनि जे शोशे बदिरां मकानी हुकूमत खे मज़बूत करे मसइलो हल कयो वञे।

0: कड़ी यासीन में आबादगारन जो पाणी जी खोट खिलाफ इंडस हाईवे ते धरणो। आबादगारन एहतजाज कंदे काबल स्टाफ वट शिकारपुर लाड़काणो रोड ते धरणो आयो। आबादगारन जो चवण आहे त मुनसिप पाणी विरछ करे पाणीअ जी खोट खत्म कई वञे, पाणी मिलण ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। धड़ो लगवाली शाह सिम नाले जी खाटी न थियण खिलाफ रहवासी सरापा एहतजाज। बेलो रोड ते धरणो यूसी मुरादपुर में सिम नाले जी खाटी न थियण खिलाफ 10 गोठन जे रहवासियुनि लोटिया स्टाफ ते एहतजाज कयो। गोठाणनि जो चवण आहे त सिम नाले जे 10 सालनि खां खाटी न कराई वई आहे। सिम नालो गंद सां भरिजी वियो आहे, बरसातनि सबब सिम नालो ओवरटॉप थी वियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि तां घारा लॻी रहिया आहिनि। वाली शाह सिम नाले जी खाटी कराई वञे। टंडो आदम में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ते मुबैना कब्जे खिलाफ़ उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। अॻवाणनि जो चवण आहे त बासर वकील स्कूल खे पंहिंजी मिल्कियत ॼाणाए राति जे वक़्तु भित ऐं दरवाज़ा लॻाए छॾियो आहे। स्कूल ते कब्ज़े सबबि नियाणियुनि जी तालीम मुतासिर थी रही आहे, कब्ज़ो ख़तम करायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो
7: 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड।

0: का सईद
1: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
3: जी हा 2315-2575-786
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

हांजी, असल न इनकार कंदस पर इनकार तव्हां हिते बि न आहे करणो, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणो पवंदो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे जेका तव्हां हर स्किन जे मथां इस्तेमालु करे सघो था। उन खां अलावा भई तव्हांजे मैसेज तरफ़ अचूं था त कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे संजय जी पाल हमारे साथ है। संजय जी पाल भाई कहते हाय, ये मैसेज मेरे दोस्त को डेडिकेट है, आपका दोस्त है आकाश भिंडू शरीफ से है, उसको डेडिकेट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बोलना है ये कि मेरी तरफ से बोलना मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, थैंक यू सो मच। अभी ये मैसेज मुझे थोड़ा समझ नहीं, जैसे आपने लिखा है मैंने वैसे ही बस पढ़ दिया। आपका दोस्त सुन रहा है तो बस वो समझ जाएगा। और मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेका बाबा से आपको वेलकम कहा जाता है। और स्मार्टू गोपांग हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते सिद्रा, आई एम लिसनिंग योर शो इन कंपल्सरी, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, माशाल्लाह प्लीज प्ले मंजूर सखिरानी, हाजिर हलायूं था। किशोर भाई कहते हैं कि अगर एक शख्स 10 लोगों से हाथ मिला रहा है तो जवाब एक कैसे होगा, एक तो मैं कह ही नहीं रही हूँ ना, एक किसने बोला है, बुधाए वो मानो जेको एक तो चवे। मिली करे सब कुटकी डींदासीं। न बाबा, सब सियाणा आयूं। अख्तियार अली सिंधी भाई हमें सुन रहे हैं, अख्तियार भाई आपको वेलकम कहा जाता है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। और बताएं कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। सुमाटो गोपांग कहते हैं सिद्रा, रात मैंने ख्वाब देखा भाई, आपका ख्वाब जो है ना ये शायद कभी पूरा नहीं होगा। और वासु भाई के दीदी सिडो डिस अन्या वेठो आया पोस्ट में, वाह साईं वाह, वासु भाई जो तो कुछ जवाब ही ना है ना, वासु भाई थैंक यू। अनवर भाई सांसा गड मौजूद है, अनवर भाई तांजो मोहब्बतू आइन बाबा, बस हर के जो पांजो गड़ो मिजाज हुंदो आ ना, गाल के थोड़ो समझंदा कयो। न बाबा, मां जबल ते कोन चवंदम तव्हांखे, जबल इज डेंजरस। अच्छा, अखलाक भाई कहते हैं सिद्रा स्कूलन जी मोकल करा, बाबा मुझे बस समय त इहो आहे ई नी, सो तव्हां त खैर वेंदा कोन स्कूल, तव्हां जा बाक़ी ॿार वञनि था, सुठी ॻाल्हि आहे न, ॿारनि खे पढ़ायो लिखायो बाबा, आई एस वाई एस बनायो।

ई थींदी न बाबा, छो त जेका शइ न थींदी उन जे बारे में त ख़बर हूंदी आहे न। दर्दे दिल कहती है टॉपिक चंदा 10 या 5 बाकी तो लास्ट में तुम बताना। ओके ओके किशोर भागे थे अदा तुझे लिसनर के समझाए मुख्य रिक्वेस्ट न मोकलिन आई एम छोकरो बाबा ये थोड़ा मतलब क्रेक आय दिमाग खान जे तक रिक्वेस्ट मोकलिन था। अच्छा तुम सीधो ब्लॉग कर मारे छींदा कर समझो और ये हमारे साथ हैप्पी आ चुकी है। हैप्पी स्कूल का मोकल मिली वही तुम्हें वालेकुम असलम तुम्हें चौथा भली करी आया अनवर भा तुम टॉपिक जो जवाब दिनों आए वस सही वाह तरक्की थी वही बो।

बन जी दीमक लिदड़ी कहती ये मेरा मून है आई समझ है। जी जी बिल्कुल हम समझ गए हैं। अच्छा फजीला सिंधी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम हैप्पी ट्यूसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं जानो मैं ठीक हूँ जानो तुम बताओ कैसी हो सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और बाजी और ऑल स्वीट सिस्टर्स को भी ओके ओके। अच्छा इस गाने की फरमाइश हमें हमारी इरम ने कर दी थी तो इरम ये गाना तुम्हें डेडिकेट

भले रखो बाबा भले रखो मोकल गई उनके अलावा तुम पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो ये बुधायो था तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोने या फेस वॉश हणो था। अच्छा कमर जमान बलोच कहते हैं सिद्रा जी आप कैसी हैं 4 साल के बाद फिर वापस आए हैं आपके शो में आपको वेलकम कहा जाता है बहुत शुक्रिया थैंक यू।

0: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बहुत। अरे भाई वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, क्यों नहीं समझते।
1: सोनवा सोनवा सोना साई को पान को बेहतर ठाई।
0: बिल्कुल सुना प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब, वो डी स्किन फेस वॉश है जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया बाबा के कितना भला प्रोडक्ट है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए। खूबसूरतियां हासिल करना कौन नहीं चाहेगा, मुझे तो पहले ये बताओ।

पोजी हिकु सोणो वरी पाण खे ठाहे थो। आए हाय, समझो था खूबसूरती किथे वञी पहुचंदी। सो बिल्कुल तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम।

ओके जी, सो तव्हांजा मैसेजेस आहिनि तरफ़ बि अचूं था। टाइम तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो, मतां कुझु रेज़ी न वञे। अच्छा, ये मीरपुर खां अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ ही। वालेकुम अस्सलाम बाजी। वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्ती, वाह वाह, वाइट एश ब्यूटी क्रीम। और मीरपुर खां अब्दुल्ला महर भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपने दोबारा से वही मैसेज किया है, नहीं बल्कि इस मैसेज में आपने गाना लिखा है। गाना सुनाए, कोई भी गाना सुन लीजिए, सारे गाने आप सब लोगों के लिए होते हैं। मकसूद मल्हा आपको वेलकम कहते हैं। अरिबा कहती है, आप ही मेरी प्यारी भाभी इरम। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बातें जो है वो अच्छी बातें होती है। अच्छा, उन खां अलावा गोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो कहते, तव्हां जो शो वेरी नाइस आहे, थैंक यू वेरी मच प्यारा भाउ। अच्छा, हाणे वरी असां मंज़ूर सखिराणी खां पोइ मास्टर मंज़ूर जो गानो ॿुधंदासीं। हीउ गानो बि ॾाढो ख़ूबसूरत गानो आहे। हिन जी फ़रमाइश मूंखे मेहता

अरे चाचा चए थो प्रोडक्ट्स में दम आहे पर इहो तव्हां जेको चयो न मूंखे सफ़ा ॻाल्हि समुझ में अची वई. बिल्कुलु तव्हां सही था चओ चाचा, वॾो माण्हू जेको आहे न हमेशह सही ॻाल्हि कंदो आहे. ऐं तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर बि कंदा हलो. और अलीज़ा बि हमारा शो सुन रही है, अलीज़ा को वेलकम कहा जाता है.

ओके जी ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो पिया ऐं गॾो गॾु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल बि कयो पिया ऐं डी स्किन फेस वॉश बि तव्हां लॻायो पिया ऐं तव्हां कुझु ॾाढा कंजूस बि आहियो जेके नथा वठो वठो बाबा ख़ूबसूरत थियण त हर कंहिंजो हक़ हूंदो आहे सो तव्हां बि वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश अगरि तव्हां सोचो था त अञा असांजी उमिरि नाहे थी असां क्रीमूं नायूं वणंदा त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश वठी सघो था उहो इस्तेमालु करे सघो था फेस वॉश त हर कोई लॻाए सघे थो सो तव्हां बिल्कुलु फेस वॉश ट्राए कयो तव्हांखे यकीन ॾाढो सुठो लॻंदो ऐं नथो मिले त जेके नंबर तव्हांखे ॿुधाए वञनि था नंबर ते तव्हां राबितो लाज़मी कंदा कयो अच्छा सादी तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अचे पियो थैंक यू हुनजे लाइ अब्दुल गफार भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम सलामत रहें भाईजान आप भी सलामत रहें बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम को पसंद करते हैं निदड़ी कहती है कि ये किसने बोला वो बताया तो सही और कहती आई एम नॉट जेलस पर लग रहा है कि हो रही हो अच्छा अदा चए तो सकू नालो तोते ठहे न तो मां कुछ अलग सोचो आए बुधायो तो खबर तो पवे प्यारी मोमना कहती है आपका शो सुनकर हमें सुकून मिलता है थैंक यू सो मच प्यारी मोमना और उनका अलावा संजय जी पाल भाई कहते मेरा एक पसंद का गाना है और गाना जो आपने बोला है वो जरा इंडियन गाना बोला है तो इंडियन गाने भाई हम नहीं लगाते हैं और आकाश जयपाल हमारे साथ कहते हैं सिद्रा जी मैं हूँ आकाश जयपाल और आपने जो बात पूछी है वो भाई मुझे कैसे पता मैं कोई रिश्ते कराने वाली आंटी हूँ आप अपने घर वालों से बात करिए अच्छा दर्द देने लगती है कि उन लोगों पर सलामती हो जिन्हें हमने जब कभी रूह से आजादी दी तो उन्होंने दिल की धड़कन से जवाब दिया डेडिकेट टू यू चंदा थैंक यू सो मच जाना हाज़िर हाज़िर मां सवाल जो जवाब तव्हांखे बिल्कुलु ॿुधाए वेंदमि पर हिकड़ी ॻाल्हि इहा बि त तव्हां जिन माण्हुनि पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो जल्दी करे वठो टाइम थोरो वञी बचो अथव टाइम नाहे बाबा उनखां अलावा ये हमारे साथ रमज़ान भाई कहते हाय भेण कैसी हो भेण तव्हांजी सफ़ा भली आहे तव्हां ॿुधायो कीअं ठीकु ठाक आहियो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था कोन अच्छा कमर ज़मान बलोच भाई कहते कहां से लाऊं वो गुजरा हुआ वक्त जहां तुम हर वक्त मयसर हुआ करते थे वाह वाह वाह वाह और रमजान भाई कहते हैं कि तेरे बदले हुए लहजे से कहीं बेहतर है हम जुदाई की अजियत ही गवारा कर ले कुछ खुदा ऐसा करे तुझको मोहब्बत हो जाए तू पुकारे हमें हम तुझसे किनारा कर ले आए हाय

अगर ये जो मेरा रोजगार है ना, मैं ऐसे बहुत खुश हूँ भाई, और कोई रोजगार ना ही बोले मुझे। और ये भाई कहते हैं कि कमेंट ऐसे ही लगे तो तवा के गोठ जा सरपंच आयो, बिल्कुल मुखे में लगे तो मानू चाहिए ये पाना मसला बुधाईंदा है। ॼण मां भाई सभिनी जा मसला हल करण वेठी आहियां, मां सिर्फ़ स्किन जा मसला हल कंदमि। हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधायो बाबा, स्किन सां कहिड़ो प्रॉब्लम आहे, उन जो हल तव्हांखे ॿुधाए सघां थी।

अच्छा ये सैड गाना हमें निदा ने फरमाइश किया और कहती है मूड सैड है और सैडी गाने, भाई आप क्यों मूड ऑफ है तो ऐसा सैड गाना फरमाइश कर चुकी हैं। भला भला गाना फरमाइश कदा कयो जी, मुझे लास्ट लिंक भी भलो थी वने प्रोग्राम जो किनो करे छींदा आयो एरो तां के ओएसटी या स्लो गाना बुधने जो शौक है तो 5 बजे वाली प्रोग्राम में फरमाइश करना जेको सूट भी करे।

के लिए क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हो। साथ साथ आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था प्रोग्राम का, वो थोड़ा सा दिमाग का दही बनाने वाला सवाल था, लेकिन उसका जवाब जो है ना वो सर आपको बताती हूँ। पहला जवाब तो उसका 45 होगा, क्योंकि वो जरा आप मैथ लगाते हैं तो उसका 45 जवाब आएगा। दूसरा उसका जवाब 90 आता है। अगर एक इंसान 9 लोगों से एक एक मरतबा हाथ मिलाएगा तो काउंट करेंगे तो वो 90 होगा। बाकी अगर आप थोड़ा मैथ लगाते हैं तो उसके हिसाब से जवाब जो है वो 45 आएगा। तो ये दोनों इस सवाल के जवाब बनते, 45 और 90।

ओके सो बिल्कुल आप फेस वॉश इस्तेमाल करती रहिए जी स्किन का. अच्छा सुमाटू गोपांग कहते हैं तू असा लिसनर्स जो वडेरू आई अल्लाह जाई उदा पग किथे आ मुंजी वो साथ रह के भी है जुदा. ओके जी आकाश जी पाल भाई हमारे साथ है. थैंक यू सो मच आप हमारे साथ है. प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया उसके लिए. अच्छा मैं समझा खुद बोलोगी सुनो. नहीं नहीं मैं सुनो वाले मूड में नहीं हूँ. वो तो बस मूड मूड की बात होती है.

ओगडी जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। थैंक यू मेहता भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया और सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम में मैसेजेस किए, शामिल रहे। ओगडी सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, यहाँ पर हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है। सो वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे थे पई बाबू 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करना ऐं वेंदे वेंदे बि तव्हांखे चवंदी वेंदमि बाबा त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश हुजे या वाइट एज जा प्रोडक्ट्स हुजनि, उहे सभु तव्हां ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी ख़ूबसूरती जे मुताबिक़ ई आहे। तव्हांखे कोई बि नुक़सान न पहुचंदो, बल्कि तव्हांजी स्किन सफ़ा सुहिणी सुहिणी थी वेंदी। सो मर्द मायूं सभु हणी सघो था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लॻाईंदा रहो ऐं सुहिणा सुहिणा थींदा रहो। सो किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत ख़्वायूं, जंहिंजा फीडबैक रहिजी विया आहिनि, जंहिंजा गाना रहिजी विया आहिनि, सभिनी खां माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाई। Love you all and take care.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: जजिस उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमेर मजीद मलिक ऐं जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद हलफ़ खयों। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ॾिनी जजिस खे हलफ़ खणायो। सदर आसिफ़ ज़रदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट समेत सूबाई हाईकोर्ट्स में एडिशनल जजिस जी मुक़ररी ऐं कुझ जे मुदे में वाद जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। सदर सनत ऐं पैदावार बाबति हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सलाहकार मुक़ररु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी हुई।

0: पेरी बैंक बदीन रोड मातली। छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
1: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध की आवाज।
1: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: करे जाहिर नहीं दो कर लिखण में थे न कोताही।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: एडिशनल जजेस उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो जस्टिस आया शौकत जस्टिस उमेर मजीद मलिक ऐं जस्टिस शाहरुख अर्जुन हलफ़ खयो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर डि॒नी जजेस खे हलफ़ खणायो। सदर आसिफ ज़रदारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट समेत सूबाई हाईकोर्ट्स में एडिशनल जजेस जी मुक़ररी ऐं कुझु जे मुदे में वाद जी मंज़ूरी डि॒नी हुई। सदर सनत ऐं पैदावार बाबति हारून अख़्तर खे वज़ीर आज़म जो सलाहकार मुक़ररु करण जी बि मंज़ूरी डि॒नी हुई।

वज़ीर-आज़म जी सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबत इजलास कस्टम पाउंडेड वेयर हाउसेज की थर्ड पार्ट कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो कस्टम पाउंडेड वेयर हाउसेज में भी बेज़ाब्तगी की का भी गुंजाइश न है। बेज़ाब्तगी में मुलविस अमल इदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां बहरीनी जी परडे॒ही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राब्तो। बहरीनी परडे॒ही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी अमेरिकी सदर जो जंग में ईरान खां थियल नुकसान जो अर्ज़ालो कराइण जो मुतालबो। ट्रंप चयो आहे त अबना हर्मुज़ ते अमेरिका जो 100% कंट्रोल आहे। बारूदी सुरंगूं साफ़ कयूं वयूं आहिनि। ईरान हाणे कंगाल थी वियो आहे। वटस पैसा नाहिनि। ग़ज़ा बाबति अमुन मनसूबो रद्द करण ते नेतन्याहू खे जल्द जवाब ॾींदसि। अबना हर्मुज़ जो तहफ़ुज़ अमेरिकी हमला रोकण ऐं नाकाबंदी जे ख़ात्मे सां सलाहड़ियल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराग़ची चयो त अबना हर्मुज़ जी बंदिश जो वाहिद सबब अमेरिकी ऐं इसराइली जहरियत आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर जो जर्मन हममुनसिब सां फोन ते राब्तो करे ओमान सां जारी मुशावरत बाबति बि आगाह कयो। आज़ाद कश्मीर में थियल चूंडनि जा टे मरहला मुकमिल। नून लीग 38 सीटनि मां 24 ते कामयाबी माणी हुकूमत ठाहिण जी पोज़ीशन में अची वई। पीपल्स पार्टीअ जो 12 सीटनि सां बि॒यो नंबर। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ पंहिंजी सीट खटण में कामयाब। अवाम दोस्त बाज़ू पार्टी हिकु सीट हासिल करे सघी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस IPP जमायत इस्लामी समेत ॿियूं पार्टियूं नाकाम। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सरबराह सरदार अतीक बि हाराए वियो। अॻोणो वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास राणा खे बि ॿिनि तकनि तां हाराए वियो। मौजूदा सिस्टम नाकारा ऐं हुकूमतूं नाकाम थी चुकियूं आहिनि। आइन खां मथां को बि कदम न खयो वञे। नवां यूनिट जा सूबा बि अवामी राय सां ठहण घुर्जनि। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त अवाम जे खीसनि ते टैक्स जी सूरत में धाड़ो न हयो वञे। सिंध हुकूमत कराचीअ खे खंडर बणाए छॾियो आहे। सूबे में करप्शन राज क़ाइमु आहे। पीपल्स पार्टी जे तर्जुमान सादिया जावेद चयो आहे त हाफिज़ नईम सस्ती शोहरत लाइ लाशनि ते सियासत न करे सिंध हिकु आहे ऐं सदाई रहंदो। गढ़ी यासीन में आबादगारनि जो पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो। आबादगारनि एहतजाज कंदे काबलो स्टाप वटि शिकारपुर लाड़काणो रोड ते धरणो आयो। आबादगारनि जो चवण आहे त मुनसिफ़ाणी विर्श करे पाणीअ जी खोट ख़तम कई वञे। पाणी मिलण ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। दड़ो लग वाली शाह सिम नाले जी खाटी न थियण ख़िलाफ़ रहवासी सरापा एहतजाज। बेलो रोड न थियण ख़िलाफ़ 10 ॻोठनि जे रहवासियुनि लोठिया स्टाप ते एहतजाज कयो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त सिम नाले जे 10 सालनि खां खाटी नाहे कराई वई। सिम नालो गंद सां भरिजी वियो आहे। बरसातनि सबबि सिम नालो ओवरटॉप थी वियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि तां घारा लॻी रहिया आहिनि। वाली शाह सिम नाले जी खाटी कराई वञे। ॿी सूरत में अदालत जो दर खड़काईंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याब वधिक मान वधायण लाए तवां सा गड आहे। सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: वाकई मां घणी शयूं साम्हूं आयूं आहिनि। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुक़रर कयल टिन एडिशनल जजेस उहिदे जो हल्फ खणी वरितो। जस्टिस अयाज शोकर, जस्टिस उबेर मजीद मलिक ऐं जस्टिस शाहरुख अर्जुमन हल्फ कयो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर टिन्ही जजेस खे हल्फ खणायो। सदर आसिफ अली सरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत सूबाई हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस जी मुक़ररी ऐं कुझु मुदे में वादे जे मंज़ूरी डि॒नी आहे। सदर सनत ऐं पैदावार बाबति आरून अख़्तर खे वज़ीर आज़म सलाहकार मुक़रर करण जी बि मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म जी सदारत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबति इजलास। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज जी थर्ड पार्टी ऑडिट कराइण जी हिदायत। शहबाज शरीफ चयो त कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज में बेज़ाब्तगी जी का बि गुंजाइश नाहे। बेज़ाब्तगीअ में मुलविस अमलदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां बहरीन जे परडे॒ही वज़ीर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद जो फोन ते राब्तो। बहरीनी परडे॒ही वज़ीर पारां जल्द पाकिस्तान जो दौरो करण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर। पाक सऊदी ऐं तुर्कीआ जे दिफ़ाई माहिरे ते वाधायूं बि डि॒नियूं। बहरीनी परडे॒ही वज़ीर पारां ख़िते में अमन वारनि पाकिस्तानी कोशिशनि जी बि हिमायत कई वई।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड प्यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बताए।
3: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा केस में अहम अखबार आई है। सिंध सदस्य डीएनए वालदेन से मैच थी वो जांच टीम भी लाश मिलने वाले हंध में गेस्ट हाउस पहुंची शायदियों गड कयूं। जांच टीम में बिन मेंबर्स डीएसपी सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली जो इजाफो ज़रीन मुजिब मीर रजा की रत में बेहोशी की दवा शामिल हुई और जेल में गोली लगल हुई। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन जो चवण है तो 13 दिन का पोए पेरियों भेरों महसूस थी रो है तो जांच सही रुख में अगते वधी रही है।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: इन मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारिय साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधिक मान वधायण लाए तवासा गदाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कय आला मयार जो सोना यूरिया जें जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐ बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-200।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पाकिस्तान के ठहण में हिंदुन सिखन ए मसीह बिरादरी अहम किरदार अदा किया। कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना जो 11 अगस्त वो खिताब आइन जो हिस्सो है अकलियतू मुल्क जो अहम हिस्सो है। वजी अजम शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में अकलियतन के कौमी दीह ते तकरीब का खिताब। वजी अजम अकलियतन जो किरदार पाकिस्तान की तारीख जो अहम हिस्सो बणजी चुको है। मुल्क की तरक्की में भी अकलियतन जो अहम किरदार है। तालीम के शोबे में पारसी ए मसीही बिरादरी जो खिदमतू शानदार आन। असा सभी के गर्जी पाकिस्तान के तरक्की के दग से अगते वी वनो है।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैन साथ ज़िंदगी भर का।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03125-25786।
2: जी हा 2301-3525-786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।
6: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो DFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125-25786।
5: जी हा, 2315-25786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिल्क की हो तो आवाज भी सिल्क की है। GFM 88 नेटवर्क सिल्क की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।